0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे

0: हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी, जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पावसाच्या रिमझिम सरीसोबत आपण ऐकत आहात आकाशवाणी नांदेड केंद्राचं प्रसारण, FM बँड 101.1 मेगाहर्ट्सवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवरही 6:05 झाली आहेत। चिंतन या कार्यक्रमात ऐकवित आहोत हुरहुर याविषयी कुमुदिनी रांगणेकर यांचे विचार।
2: हुरहुर म्हणजे चिंता, हुरहुर म्हणजे काळजी, हुरहुर म्हणजे चुटपुट बेचैन करणारी। हुरहुर आणि कातरबेळ यांचं नातं फार पुरातन आहे। दिवसभर कामात किंवा वाट पाहण्यात वेळ जातो, पण जसजशी संध्याकाळ जवळ येत जाते तसतशी अधीरता वाढत जाते। अधीरतेचं रुपांतर चिंतेत व्हायला लागतं, मनाची तगमग वाढते आणि मग वाटायला लागते हुरहुर। हुरहुर शब्दात पकडता येत नाही, ती आहे मनाची तरल अवस्था। हुरहुर करणाऱ्या व्यक्तीला असतो लागलेला ध्यास, इतर ठिकाणी लक्ष नसतं, अवतीभोवतीचं भान नसतं, मनात विचारात डोळ्यापुढे असते फक्त ती व्यक्ती, तो प्रसंग, ज्यामुळे मनाची अवस्था एका अर्थी विकल झालेली असते। हुरहुर लागलेली व्यक्ती सैरभैर होते, तिला सर्वत्र तेच ते आणि तेच ते दिसतं, भासतं, जाणवतं। कृष्ण सहवासाची ओढ लागलेल्या राधेला कानात दिवस रात्र घुमत राहायचा पावा, तो आपल्यासाठीच वाजवतोय, नव्हे आपल्याला साथ घालतोय असं तिला वाटायचं। आणि त्या नादात, त्या तंद्रीत ती वेळी अवेळी पाणी आणण्याच्या निमित्ताने यमुना तीरी धाव घ्यायची। काही वेळा शिरावर घडा असायचा तर काही वेळा तो भरलेला असायचा। तिचं कामातही लक्ष नसायचं, ती लोणी घुसळायची तेव्हाही अविरता हरीचे मनात चिंतन। तशीच कृष्णवेणी मीरा, तिला तर कृष्णाशिवाय दुसरं काही सुचायचंच नाही। तिनं तर जन्मवरीच्या श्वासा इतके हरिनाम मोजून कृष्णाला विकतच घेतला होता। कृष्ण होता मीरेचा ध्यास, कृष्ण होता मीरेचा श्वास। ध्यानी कृष्ण, मनी कृष्ण, जळीस्थळी कृष्ण, कानात बासरी, डोळ्यात मूर्ती, कृष्णाशिवाय ना दुसरी सृष्टी, या तिच्या ध्यासापायी आणि कृष्ण दर्शनाच्या ओढीपायी तिच्या हाती आला विषाचा प्याला। पण त्या क्षणी ती कृष्णरूपात सामावून गेली आणि संपली तिची हुरहुर। रायगडावर दरवाजे बंद झाल्यामुळे अडकून पडलेली हिरा गवळण घरातल्या तान्याबाळाच्या आठवणीने व्याकुळ होते। ती हुरहुर चिंता तिला बेचैन करते आणि मग जीवावरचं धाडस करून अवघड वाट ती जवळ करते, घर गाठते। तिच्या या हुरहुरीतूनच निर्माण झालेल्या धाडसानं तो बुरुज हिरकणी बुरुज म्हणून इतिहासात अमर होतो। तू दूर दूर तेथे हुरहुर मात्र येथे, हीच हुरहुर एका तीरावर असलेल्या सोहनीला दुसऱ्या तीरावर असलेल्या महिवालाला भेटण्यासाठी पूर आलेल्या नदीत उडी घ्यायला लावते आणि तिचं जीणं संपवते।

हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। स्वच्छ भारत का है जन अभियान, घर घर तक ये पहुंचे पैगाम। गली गली सड़क सड़क पूरा शहर स्वच्छ हो, एक अकेला क्या करे इसमें सबका साथ हो। स्वच्छ बने ये भारत सारा, घर घर में फैले उजियारा। सफाई का ये पावन अभियान, मिलकर बनाएं भारत महान।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है।

0: नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम

0: भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है?

0: ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बँड 101.1 मेगाहर्ट्झ वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी नांदेड केंद्राचं प्रसारण। सकाळचे 8:15 झाले आहेत। अशी श्रोते आज वनमहोत्सव अर्थात वनांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारीची जाणीव करून देणारा दिवस। चला तर मग आता पावसाला सुरुवात झाली त्यामुळे वृक्षारोपण करण्यासाठी आपल्यापुढे मोठी संधी आहे। गतवर्षी आपण कदाचित संकल्प केला असाल तो संकल्प आता तडीस देण्यासाठी हे आपल्याला आता मोठी संधी उपलब्ध झाली त्यामुळे वृक्ष लागवड करूया। आपल्या अपत्याप्रमाणे त्या वृक्षाचे समर्थन करूया। ऐकत राहूया आकाशवाणी नांदेड केंद्राचं प्रसारण। सकाळचे 8:15 आणि 40 सेकंद झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम मिश्र संगीत। मिश्र संगीताच्या सुरुवातीला ऐकवित आहोत अदनान सामी यांच्या स्वरात रियाज उर रहमान सागर यांचं अल्बम गीत। संगीत अदनान सामी यांचं

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में। पुलकित ऋषि ने इसे लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा

आसान होता है, असली बात कौन बताएगा? भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि इस समय में मुझे सोना है, और रोजाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत जरूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। कोई बहुत जरूरी काम हो, बहुत जरूरी मेल भेजना हो, बहुत जरूरी संदेश भेजना हो, तो जरूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीजें वगैरह देखने के लिए ना करें फोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोजाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है। तो वो जो बहुत ज्यादा खुश रहता है या बहुत ज्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक जिद पाल लें कि सोना है समय पर और रोजाना, और ये जिद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी जिद है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये जिद जरूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीत के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

0: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का वक्त है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों भेज रहा है कि तू इन स्विंगर डालता है? ग्रिप छुपा।

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना, सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, केके और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
0: उंगली में

0: नगीना,
1: उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना,
0: उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: तार क्यों भाई, बादल क्यों भाई, मोती मैं सच कहता हूँ, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।
2: एक अंधेरा लाख सितारे।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण

और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: जान अपनी छोड़ के।
1: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
0: इसे तराशा जाता है
2: और
0: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
0: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
0: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको

0: बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं, उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे।

0: इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
1: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
1: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
4: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
4: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
4: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
4: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
4: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
6: ये हंस कैसे बताएगा? गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा रहा
5: है? कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया।

0: लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6

0: वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सौर मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और

0: हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
1: विशाल गैसों का गोला?
2: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
0: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
4: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
0: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
4: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
2: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: आताच आपण प्रायोजित कार्यक्रम ऐकलात उमंग। उमंग हा प्रायोजित कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या नांदेड केंद्रावरून FM बँड 101.1 MHz वर, आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी नांदेड केंद्राचं

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम।

सम। ये कहता है, दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, वन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की बारात, और इस बारात को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं, और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई, और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आई, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की, 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है, क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं, तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवंत में जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है मोहब्बत में, मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं, एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं। झूमता माँ

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छाट कर लिया है, चुन कर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बता

बताना है, और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है। उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत, और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियां थी, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से। और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो जरूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीजों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जी

जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है, तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं। पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें यह संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है, तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना। हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है। धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे?

जब आप मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए, खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है।

0: नियाग्रा फॉल्स पर बड़ा ही प्यारा नजारा हम कभी नहीं भूल सकते। वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है। इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बद्दूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है। ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे, पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है। सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है। बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह। ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नजर में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। भला

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने

0: जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
0: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे

0: करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर

0: प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

गया। असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।

0: सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। यह है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: रुचि
0: जाती।
1: उत्पन्न होती
0: जी,
1: जी।
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने

0: ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की काथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
1: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन काथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
0: जी
1: सम्मानित कर दिया
0: बिल्कुल।
1: जी।
0: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दे और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दे, आत्मनिर्भर होने दे।
0: बिल्कुल। अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल। और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे।
1: तो एक गाना सुनते हैं,
0: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
1: हमारा
0: मजाक
1: चेहरा
0: में
1: वैसा
0: बोलते
1: ही
0: हैं
1: हो जाए।
0: वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
1: हाँ,
0: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
1: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
0: हाँ
1: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
0: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
1: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के

0: फोटोज होते हैं, तो जो
1: हाँ
0: फोटोज
1: बिल्कुल,
0: ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
0: और
1: सारी
0: कुछ
1: जी
0: तस्वीरें तो ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था है ना, वो इंतजार, वो उत्साह और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
0: जी
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है, और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
0: और फिर
1: जाता है और
0: उस
1: फिर वो
0: वक्त,
1: बातें पता नहीं कहाँ
0: हाँ,
1: तक चली
0: और
1: जाती
0: उस
1: हैं।
0: वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
1: बिल्कुल
0: सुंदर यादें हैं ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
0: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी, वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि ये बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर
1: जी कभी
0: दिखाता।
1: मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे,
0: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है। यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है।
1: एहसास तो वही करा रहा
0: और वो जो है ना
1: है
0: सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवां चल पड़ता है। बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है,
0: जी
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है,

0: और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो
1: बिल्कुल
0: हमारा अच्छा ही चाहेंगे। और सब कुछ सोच के, घर परिवार देख के, पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के, पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था। और
1: जी
0: फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
1: बिल्कुल
0: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: मदद मिले,
1: बिल्कुल
0: सहयोग मिले।
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ
1: एक्सपेक्टेशन,
0: बटाए,
1: हाँ
0: यानी
1: ये
0: पुराने
1: वाली
0: जमाने में ऐसा
1: अपेक्षा
0: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं,
0: सिर्फ
1: ऐसा
0: लड़कियां
1: नहीं
0: ही
1: होता
0: काम
1: था।
0: करते थे।
1: हाँ लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इससे कोई गलत या बुरा नहीं मानना
0: जी
1: चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस से कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एडुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करें?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहां पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान लें कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से यानी जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सबने बहुत आनंद लिया था, सबने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल

0: जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे, घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
1: बहुत
0: अत्यंत
1: जरूरी
0: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
1: ले सकती है,
0: अपनी
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा
1: पूरी कर सकती है।
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे
0: उस परिवार
1: परिवार
0: को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल,
1: और अब गाना सुन ले, एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा
1: होता तो है
0: ना?
1: हाँ? और
0: पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में सोचते
0: सोच
1: हैं ना।
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूं, फिर ये क्यों बोल दिया। इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या
0: खाना
1: फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है। कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है,
1: बिल्कुल।
0: आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
1: ऐसा अक्सर हो
0: होता
1: ही जाता
0: है
1: है।
0: ना?
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको
1: बिल्कुल
0: सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: जब
1: बहुत जरूरी है
0: हम
1: क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूं, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत

0: मसालेदार नहीं होना चाहिए और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
1: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से पहले,
0: बिल्कुल
1: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
0: बिल्कुल। और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
1: आराम दे।
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले।
0: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम दिल लगाए रहते हैं सर।
0: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
1: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
0: मिस्त्री लाइन के मतलब?
1: तो मकान मिस्त्री का सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
0: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती?
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लत बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
0: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
0: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
1: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर घर आता है अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
0: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
1: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, गैंग पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हवा में सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल।
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, है हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो,
0: खानदान सुन लगे। अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधि फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है
0: जी।
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब वो तो गाना ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ 1943 में एक फिल्म बनी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदन लाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर जरूर।
1: रोल है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सजन आ
1: जाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन में दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहेब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधोक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है आजकल, टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो
1: सर
0: गए।
1: जी बिल्कुल
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे? अच्छा
1: जी, जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है, जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने
1: जी
0: सेलेक्ट किया
1: फिल्म
0: है?
1: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए
0: ओहो,
1: मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है। आप

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी विविध बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को फूल?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज किए हुए सेब जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये

0: पूरे भारत में पहुंच जाते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज किए हो जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, आपके बाग के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
0: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं। अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं, और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
1: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
0: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
1: जल्दी आ जाते हैं।
0: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है, और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, हमारे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है। मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
1: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
0: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है, और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की टू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
1: हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन, आपका नाम बताइए।
0: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
1: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज।
0: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
1: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
0: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
1: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमरदीप जी।

0: नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
1: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
0: भैया जी अपना बताइए।
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
0: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में, और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा। घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है, मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
1: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
0: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर की मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
1: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
0: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बता।

0: एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
1: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
0: मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
1: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
0: जी, न्यूज एनआईआर वाला।
1: बहुत बढ़िया है।
0: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
1: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
0: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
1: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट
1: जी,
0: हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। इन 40 दिनों को हम कश्मीरी में वारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: वारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन वारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो वहाँ पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
0: अच्छा तो ये बारात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय में जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ।
0: आपकी नजर से वो गर्मियां हैं मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहां 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: ओ
1: दिन
0: अच्छा
1: 30
0: अच्छा
1: होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
1: हाँ जी,
0: वाले
1: हाँ
0: कहाँ
1: जी,
0: जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
0: नहीं
1: गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
0: जी जी जी
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम
0: चलो
1: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह बड़ा अच्छा लगा जानकर के, और आपने टेस्ट
1: हाँ जी,
0: सबका अलग होता है कहा तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना, तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी,
0: फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं,
0: जी जी
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ। लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं वो कश्मीर के नज़ारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं
0: आ गए हैं
1: कहाँ।
0: कहाँ, क्या बहुत
1: जी
0: ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना?
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जी कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना? पुराने हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा, और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रीकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामी, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ, आग कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं, यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

0: वो खरीदार नहीं हो सकता।
1: ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आंच केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से, हाँ लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
2: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि,
4: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं।

0: रिकॉर्ड कर दो।
1: तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना के, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के, मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
3: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। विविध भारती से बोल रही हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए तराने नए पुराने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा।

0: कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।
2: अब सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती से।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

तुम्हें मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी तो थी रातों में जागी सी।

0: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। अमर सुल्तानपुरी के बोल थे और संगीत था सचिन देव वर्मन का। इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम खत्म होता है।
1: तराने नए पुराने।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज के शेष और कल दिन भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत और लोक संगीत में मासूरी की भूमिका, ये श्रृंखला संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है। दूसरी कड़ी हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:45 पर। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7:00। सात बजकर 45 पर इनसे मिले कार्यक्रम में निर्देशक और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रात 8:00 हवा महल के अंतर्गत प्रहसन सुनेगा सिलसिला बहानों का, सुरेंद्र कौशिक ने से लिखा निर्देशक सुशील बैनर्जी। 8:15 पर चित्रलोक सुनिएगा। रात 9:00 आपके लिए कार्यक्रम होगा। 9:30 पर मोहम्मद अजीज पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। रात 10:00 छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात।

6:05 पर आप सुनेंगे वंदन बार कार्यक्रम। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदारी से पेश कर रहे हैं। सुबह 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर सुनिएगा वंदे मातरम, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, 8:30 पर चित्रलोक, अभिनेता राजकुमार पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे। यही कार्यक्रम रात 9:30 पर सुना जा सकता है। सुबह 10:00 हेलो फरमाइश, 11:00 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 3:00, 4:00 गीतों भरी कहानी, सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, कहानीकार मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह। शाम 5:00 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7:00 जयमाला कार्यक्रम सुनिएगा।

अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पत्रिकर की बातचीत पर केंद्रित ये कार्यक्रम कल शाम 7:45 पर सुना जा सकता है। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए प्रहसन, पड़ोसी का कैमरा। हिमांशु श्रीवास्तव ने इसे लिखा, भगवान साहू का निर्देशन। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता राजकुमार पर। 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात।

आखिरी फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिर लुधियानवी के बोल थे और तर्ज थी रवि की। एक बार फिर साहिर लुधियानवी के बोल, इस बार संगीत जयदीप का है। फिल्म का नाम है हम।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोनू दादा, आपका एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बताइए, आज की इस कड़ी में अपने खजाने से कौन से मोती बिखेरेंगे? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो कि बांसुरी के जन्मदाता, बांसुरी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे?
2: इंग्लिश में दो लाइनें कही जाती हैं, When there was nothing in the world, still there was sound. And that sound was sound of nature. जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी नेचर था।
1: बिल्कुल।
2: जीव जंतु, आदि मानव या कुछ भी, उससे भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियां थी, जंगल थे, वन थे, तो बांस भी था। तो ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से बांसुरी की शुरुआत हुई, ये गलत है। उससे पहले भी बांसुरी थी।
1: बिल्कुल।
2: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए, मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद जाके सिलचर, आसाम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था
1: जी।
2: और मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हवा जब चल रही तो बहुत लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो छेद करते हैं वहां से इंसान को बजाने की प्रेरणा मिली, उन कीड़े मकोड़ों की वजह से। और बांसुरी लोक संगीत में बजती रही
1: जी।
2: और शास्त्रीय संगीत में तो सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है और रावण हत्ता के रूप में बजता था
1: जी।
2: क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे। और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा और लोकवाद्य कोई भाटियाली धुन या कजरी बनारस की बजेगी और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे
1: जी।
2: तो इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है
1: जी। जी, जी।
2: संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं
1: जी, जी।
2: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी
1: जी,
2: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया।
1: क्या
2: और सा कैसे बजेगा?
1: हाँ।
2: इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है, कोई साइंस नहीं है ना उसमें
1: जी, जी।
2: उसमें सिर्फ आत्मा है। जब वो राग रागिनी में आ जाता है तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है,
1: सुर आ जाता है, फिर सुरों की संख्या
2: जी। तो उन्होंने तीन होल बंद रखना, तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको।
1: अच्छा,
2: इतनी बड़ी उनकी। और ये जो छोटी उंगली है उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी, इसीलिए जो पन्ना बाबू को फॉलो करते हैं वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह होल से बजाते हैं।
1: वाह, क्या बात है।
2: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सा से पा तक, बिर देखिए मैं बजा के सुना रहा हूँ
1: जी,

0: ऐसे फ्रेज जो बांसुरी में बजते नहीं थे वो बजने लगे। और आज उसके बाद चार प्रमुख बांसुरी वादक पन्ना बाबू से प्रेरणा लेके बने। पहले बुजुर्ग पन्ना बाबू के सन इन लॉ, उनके जवाई, क्योंकि पन्ना बाबू की बेटी से उन्होंने शादी की थी, देवेंद्र मुर्देश्वर जी,
1: जी।
0: उसके बाद मेरे गुरुजी बड़े थे वो पंडित विजय राघव राव जी,
1: जी।
0: और उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, और इन तीनों से छोटे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरि जी ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने एक बार हरि जी को एक नाम दिया था। जन्माष्टमी के दिन पीटीआई ने मुझसे पूछा कि हर साल हम लोग एक बांसुरी वादक से बात करते हैं, इस साल वो आप हैं रोनू दादा। उसी साल मुझे कुमार गंधर्व अवार्ड मिला था,
1: जी जी,
0: 2006।
1: जी जी।
0: तो बोले आप पन्ना बाबू और हरि जी को कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि पन्ना बाबू देवकी है और हरिप्रसाद जी माँ यशोदा है।
1: क्या बात है, गजब।
0: क्योंकि माँ देवकी ने जन्म दिया मगर बांसुरी को पाल पोस्ट के बड़ा किया हरि जी ने। उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू का जो अधूरा काम था असामयिक वो तो 60 भी पूरा नहीं कर पाए।
1: बहुत कम उम्र में चले गए, बिल्कुल
0: 53-54 साल की उम्र में गुजर गए। तो बहुत सारा काम अधूरा था, उस अधूरे काम को इन चारों के साथ मिलकर हरि जी ने फिर पूरा किया। फिर वो पीटीआई ने पूछा तो फिर आप क्या है? मैंने कहा मैं सुदामा हूँ।
1: गजब, क्या बात है।
0: मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ।
1: अद्भुत।
0: मेरे पास कुछ नहीं है, वो झाल मुड़ी में जो मुड़ी डालते हैं वो मैं तौलिया में लपेट के कृष्ण को खिला दूंगा, खुश हो जाएंगे मेरा वादन सुन के।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भी बांसुरी को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई और बांसुरी एकदम से प्रचलित हो गई। दादा, आपने बांसुरी में कुछ नए प्रयोग किए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
0: मुझे ऐसा लगता था कि बीनकारी अंग जो है
1: जी,
0: जो कि रुद्र वीणा को बीन भी बोलते हैं
1: जी,
0: तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि बीन मतलब वो सपेरा जो बीन बजाता है वो बीन, तो बीनकार मतलब बीना
1: जी,
0: वादक के अंदर जो घसीट का जो काम होता है वो बांसुरी में आप ऐसे कह सकती हैं कि वो मैंने सबसे पहले घसीट और आंदोलन
1: जी,
0: जो चीज रुद्र वीणा में बजा के सारे तो भैरव में कोमल ऋषभ अति कोमल है और धैवत भी अति कोमल है, मतलब कोमल से भी और थोड़ा सा उतरा हुआ।

0: अब मंद्र सप्तक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो अब पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी।
0: और बहुत सारे बांसुरी वादक मुझे फोन करते हैं कि पंडित जी ये जो नीचे के सा मंद्र सप्तक
1: जी
0: की खरज का काम के लिए ये जो आपने बनाया और इसको कॉन्सर्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने, तो खुशी होती है कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा
1: जी
0: मेरे वादन में मुझे ढूंढा करेगी दुनिया।
1: क्या बात है।
0: तो मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, मगर मेरा शंख बांसुरी बच्चे बजाएंगे, बुजुर्ग बजाएंगे, मुझे उसकी खुशी है। तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं कि ये मेरे नाम से रजिस्टर है आप मत बजाइए, ऐसी मैंने धृष्टता कभी नहीं की
1: जी।
0: देखिए शंख बांसुरी में भैरव में शंकर भगवान की जटाओं का जो गहरापन है भोले बाबा का वो देखिए।

0: किया
1: अति सुंदर, अति सुंदर। तो दादा, ये जो शंख बांसुरी आपने बजाई, इसकी विशेषता भी बताएंगे हमारे श्रोताओं की, क्या विशेषता है?
0: विजय राघव राव जी के बाद भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी मैंने सीखा
1: जी।
0: तो मैं उनके साथ मॉस्को गया था 1988 में
1: जी, जी।
0: भारत का फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहां चल रहा था, और आप जैसे जानते हैं रशिया शुरू से हमारा दोस्त रहा है
1: जी।
0: और रशियन लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वहां जब सब लोग सीख रहे थे, मेरे सीनियर गुरु भाई पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी जो जी, मेरी जनरेशन का ही है, शुभेंद्र राव, ये लोग मंद्र सप्तक का काम बहुत अच्छा कर रहे थे
1: जी, जी।
0: मैं नहीं कर पा रहा था
1: जी।
0: छोटी उंगली जो जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी आप मध्यम तक इतना जा सकेंगे
1: जी, जी, जी।
0: उसके नीचे क्या
1: जी।
0: तो उस बात ने मुझे विचलित कर दिया।
1: क्या बात,
0: मन व्यथित हो गया।
1: अच्छा,
0: कि जो गुरुजी बजा रहे हैं सितार में, वो मेरे बांसुरी में क्यों नहीं आ रहा है। वहां से मैं भारत आया और काम में लग गया, और जो मेरी ओरिजिनल शंख बांसुरी है वो अभी घर में, उसको मैंने एक याद, एक संग्रह करके उसको मैंने रख दिया है। अब उसको बाहर ले जाने में डर लगता है। उस वक्त एक बैंबू जो आप देख रहे हैं शंख का, इसकी आवाज शंख जैसी है।

0: बजाने से लगता था शंख बज रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो उसलिए मैंने ये नाम इसका दे दिया कि शंख की तरह ये बजता रहे। और मंद्र सप्तक
1: जी
0: मैं चला गया फिर मैं नीचे के साथ तक।
1: बिल्कुल। और जब कभी जब थियरी में लोग सीखेंगे बांसुरी की थियरी के बारे में, तो इस शंख बांसुरी को उन किताब के पन्नों पर अंकित किया जाना चाहिए। और
0: किया भी है दीपक तो, करके लालमणि सिंह वो सरदार हैं
1: जी,
0: तो उन्होंने पूरा PhD ही किया मेरे ऊपर।
1: क्या बात है।
0: उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा लिखा जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी ये लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। उन्होंने कहा कि रोनू के वादन में आमूलचूल परिवर्तन रविशंकर जी के पास जाने के बाद हुआ। उनका बजाने में जो कृंतन जमजमा की जो होती है ना, ताना ना ना ना ना, ये करेंगे तो गमक हो जाएगा। उसके पहले का जो है उसमें स्ट्रेस दिए बगैर जो जमजमा का थाना है
1: जी जी,
0: जो विलायत खान साहब जिसके बादशाह माने।
2: संध्याकाळी ठीक 7 वाजता आपण ऐकू शकाल प्रादेशिक बातमीपत्र। तत्पूर्वी एक संदेश।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।
1: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की

परिणीता फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना। अब मोहित चौहान और ए आर रहमान की आवाजों में ये गाना सुनिए। फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत

0: शेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बाल

0: नैनीताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनमन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: नदीना,
1: उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नदीना,
0: उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नदीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।

0: क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे,

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुरा कर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूँ तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

0: मैं उस बात से अनजान हूं जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।
1: जाने

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हों, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

0: रंग तरंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले

0: वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both prime ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will